साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने खट मीनिंज छे जेडे शास्त्र ने कल सी पंचमी पंजवां दिन उदों पंज विचार दा जिक्र कीता सी पंज विकारां दा जिक्र कीता सी फिर जेड़ा सी उस तो पहला चतर चौथी सी चतर सियाना सुगड़ सोए इथे कहिंदे ने जेड़े छेवीं तिथ दे प्रथाए छठ दे प्रथाए कहिंदे छे शास्त्र ने हिंदू वीरां दे शांख विशेषक योग न्याय इत्यादि के छे शास्त्र ने इन्हां शास्त्रां दे विच बहुत कुछ डिटेल दे विच है जेड़ा इन्हां शास्त्रां नूं पढ़ लैंदा उन्हां नूं शास्त्री कहा जांदा है भी ये शास्त्री है जी विद्वान है बहुत बड़ा ने शास्त्रां दी स्टडी कीती हुई है इन्हें शास्त्र वाचे ने विचारे ने इत्थे कहिंदे जिहड़े जिहड़े छे शास्त्र ने सांख वैशेषक योग न्याय मीमांसा इत्यादिक ये सारे की कह रहे ने ऊंचा कह है उच्ची उच्ची कह रहे ने कोई ग्रंथ भी बोलता हुंदा कोई ग्रंथ भी उच्ची जां नीवी बोलता ये एक प्रतीक है भी कूक कूक के कह रहे ने एक गल ते जोर दे के कह रहे ने उच्ची उच्ची कह रहे ने इन्हां दे विच बार बार ये गल कही गई है की कहै अंत न पारावार भी उस परमात्मा का अंत नहीं है उस परमेश्वर का कोई पारला पासा नहीं जान सकता है परमात्मा नूं कोई उदा अंत नहीं पा सकता है ये सारी शास्त्रां दे भी जिक्र है उन्होंने अपने अपने ढंग के जेडे जेडे उन्होंने शास्त्रां दे जेडे निर्माता सी जां शास्त्रां दे लिखण वाले सी उन्होंने अपने अपने ढंग के नाल बयान किया पर कॉमन गल सारे च की है भी परमात्मा का अंत नहीं है परमात्मा एंडलैस है हर चीज का अंत है इत्थे हर चीज का एंड है हर चीज का अंत हुंदा है पर परमात्मा का नहीं है तुसी हैरान होवोगे सूरज का भी अंत है चंद्रमा का भी अंत है इधर भी तुसी पढ़ोगे ये भी इन्होंने भी खत्म होना है पर

नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह।

सच्चे नाए प्यारा नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया उतारा महला तीजा मनमुख हर नाम न सेवेया दुख लगा बहुताया अंतर अज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए मन हट सहज ना बीजिया पुका के अग खाए नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिला पौड़ी हर रसना हर जस गावै

साहर पावनी जो गुरमुख चके साध सा तृप्ता मुनि गुण गावे प्यारे नेता गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाला।

0: सा सतगुरु गुरु बिलावनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्तकाया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरुदयाल है, पै दुख विनाशन है, पंगत वचल अनाथ नाथे शरण, नानक पुरख अच्युत है, कोर दोख्यन अनक हत्यन, जन्म दारिद्रन महाभिख्यादन, मिटंत सगल समरंथ, हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ठ, पस्मं क्रोध, सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौह गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लग जाए कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विदाता रहाओ, नानक प्रभ विनासी, ताकि सेव न बिरथि जासी, अनद करहे तेरे दासा, जब पूरन होई आसा, बिलावल महला पंजवा, ताती वाऊ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे राम कार, दुख लग न पाई, सदगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एक आल बुलाई रहाओ, राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पही, प्रभ पहे सहाई सलोक, जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुट है, निकट न जाइयो दूत, सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवनी, उदम करोठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओवंकार सदगुर प्रसाद, जय कर कीरत आख्या करते का हुए बीचारो, तितकर गावो सोहिला, सिवरहो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हो वारी जत सोहिला, सदा सुखोय रहाओ, नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहु सजन असीसणिया, जियो होवे साहिब सो मेल, कर कर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय, नानक से देहे आवन, राग आसा महला पहला, छिय कर छिय गुर छिय उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तुय रहाओ, विश्वे तस्या कन्या पहरा, तिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुतनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनाश्री महला पहला, गगन मैथाल, रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मलानलो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तिरी आरती, अनहता सबदवा जंत पीरी रहाओ, सहस्तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत नन एक तोहि, सहस पद बिमन नन एक पद, गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोहि, सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत स पावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लो बितमनो, अनदिनो मोहे आहि प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नायवासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु पर्या, मिल साधु खंडल खंडाहे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजुलि पुनवडाहे, कर दंडोत पुनवडाहे रहाओ, साकत हर रस साधन जान्या, तन अंतर हो मैं खंडाहे, ज्यो ज्यो चलह चुबै दुख पावहे, जमकाल सहहे सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पहु खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोब खंड ब्रह्मंडाहे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वडवडाहे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला, औद कटे दिन सरनारे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार विकार संसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसहे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सुई बिहा जहो, हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पावहु सुख सहजे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज दीवाना दी समाप्ति तो परंत आप जिया दे पावन पवित्र स्वरूपां दे बस्तरां दी सेवा कीर्तन सोहिला साहिब जी दे पाठ होए हन जी गुरबाणी दे जाप करदिआं समुचियां ही सेवावां निभाउंदिआं होईआं सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी अगाह वास्ते समत प्रदान करनी। चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुखां लद्दा बतीत होया है चार पहर रहण आई है कृपा करनी पातशाह आप जिया दी याद अंदर ही बतीत हो जावे। कृपा करनी अमृत वेले तक शरीर विच स्वास रहे ता अमृत वेला बख्शिश करके निवाजना सेवा सिमरन सतसंग दियां अमोलक घड़ियां बख्शिश करनिया नामदान इशनान नितनेम भजन बंदगी बख्शिश करनी सच्चे पातशाह जीओ। होइयां सरबत भुल्लां दी खिमा बख्शनी कृपा करो जी सुखासन सेवा करन दी आग्या होवे समूह संगतां नूं खुशियां बख्शो सेई प्यारियां दे दर्शन दीदार मिले बख्शणे जिन्हां मिलिया आप जी का ही नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आखा एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै नानक, जे को आपा जाने अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक वात, सहस अठारह कहन कतेबा। असलू एक तात, लेखा होए ता लिखिया, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप। सालाही सालाही एते सुरत ना पाईया, नदिया अतै वाह, पवह समुंद ना जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेति माल धन, कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनहु ना विसर है। अंत ना सिफते कहन ना अंत, अंत ना करन देन ना अंत, अंत ना वेखन सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे, एहो अंत ना जाने कोय। बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवै कोय, तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगह जोद अपार, केते आ गणत नहीं विचार, केते खप तुटह वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते आ दुख भूख साद मार, एह भेदात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाए क आखन पाए, ओह जाने जेतिया मोहे खाए।

पान पाने नमो, कलह कर्ता नमो, सांत रूपे नमो, इंद्र इंद्रे अनादं बेपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो, आस आसे नमो, बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे उजंग पर्यात छांद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रिहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयं पव सुबं सर्वदा सर्व जुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख प्रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मातिम तांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गावन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीसना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखा पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान परे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासाएं होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नाव निध आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनदेठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग पतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेतानियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंज बाणियां दे नित नेम संपूर्ण होए हन महाराज अगाध बोध बाणी दे जाप करदिया तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देच दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नूं अपने दरों घरों नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके करतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदियां होइयां अपने दर घर दे नाल महाराज इसे तरह जोड़ी रखना
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो।

मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हंदर्स

बिन सतगुरु के न पायो, बिन सतगुरु के न पाया। सतु जाप रखन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुकत है जिनु चमो चुकाया। उत्तम विचार है।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिपत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह।

मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम थे आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल।

0: राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। जड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत आप सब संगतां वट भागे हो जिन्हां ते सतगुरां ने रहमत कीती है तरस कीता है सतसंगत दीआं कड़ियां बख्शिश कीतियां हन। इस पावन शब्द राही दासरां दे कीर्तन दे समय की समाप्ति है। सतगुरु कृपा करन एकाग्रता बनावे सतगुरु रहमत करन सबस संगत दी हाजरी दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन की दात गुरु चरणों नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन। बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले का रागी जत्था संगता वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे हां बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहब वाले के रागी जत्थे नूं कि वह आप जी शब्द कीर्तन सरवण करवाउण जी। आप जी शब्द कीर्तन सरवण करो जी ते गुरु साहब जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन न सको।

जानिए बैसोई प्यारो सकल संसार को। भाई साहब जी उदाहरण दे रहे ने पहले ही, कहिंदे देखो आपां समाज विच रहिंदे आ, सारिआं दे आपो अपने परिवार ने, किसे दा वड्डा किसे दा छोटा, उन्हां दे बच्चे ने किसे दे इक है किसे दे दो ने किसे दे तीन ने, है ना, परिवार च कईआं दे बजुर्ग ने, मतलब परिवार च आपां रहिंदे आ। हुण जिवें सारिआं नूं अपने पुत्र प्यारे हुंदे ने, सारिआं नूं अपना पुत्र प्यारा लगदा, इह तां कुदरती है। जिहड़ा चाहे अपना पुत्र जैसा मर्जी होवे, वो अपने आपां नूं प्यारा लगदा। पुत्रां दी वास्ते लोग की कुछ करदे फिरदे ने, पुत्रां दी प्राप्ति वास्ते की कुछ करदे फिरदे ने। पुत्र प्राप्त हो जाए उहदे तों फिर अपना सब कुछ वारन तक जांदे ने, कुरबान करन तक जांदे ने। कुछ खेड़े ऐसी है, कुछ मोही ऐसा साढ़े, खास करके समाज दे विच तां पुत्रां दा कुछ ज्यादा ही थां है। मैनू खिमा करना, धीआं भी भावें उस घर से जन्म लैंदियां ने, पर धीआं नूं उन्ना प्यार जिहड़ा वह देखण विच नहीं मिल रहा। भावें कि हुण थोड़ी सोच बदल रही है, मनुख धीआं ते पुत्रां दे विच जिहड़े बखरेवे सी वह मिटाण दे यतन कर रहे हैं। कुछ कानून ऐसे बन रहे ने भी लड़कियां ते लड़कियां नूं बराबर समझिया जाए, एजुकेशन दे पक्ष तों, प्रॉपर्टी दे पक्ष तों। पर तुसीं सारे मेरे नालों सियाणे हो, तो अपने भारतीय समाज के इसत्री जिस तरीके दुरकारिया गया, फिटकारिया गया, निंदिया गया, छुटियाया गया, भंडिया गया, वो किसी तो लुकया छिपया नहीं है किसी तो भी। इतने तो जेडे जिन्होंने बड़े बड़े महान विद्वान मनिया जाता, तुलसीदास वर्गे, उन तो इतों तक भी आख्या ढोल गवार सूदर पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। भी ढोल है जेड़ा, गवार है जेड़ा, शूदर है ते नारी, इन्हां नूं जिन्ना कुट्टो कहिंदे उन्ना ठीक रहिंदे ने। तुलसीदास कहिंदा कि मैं करना, तुलसीदास नूं बड़ा महान बने, उहदी महानता देख लो कित्थे खड़ी है। ढोल गवार, गवार जेड़ा अनपढ़ है, शूदर जेड़ा छोटी जात दा शूदरां च गिणिया गया, पशु ते नारी, इहदा मतलब जिहड़ी नारी है पशु वर्गी है। एक ना किताब है, जे तुसी पढ़न दे इंटरस्ट रखते हो, भारती औरत दी दास्तान, भारती औरत दी दास्तान, वह पढ़े उत्ते ऐन कहने तो भाव झंझोड़ के रख देती है।

जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिया घट घट शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाण हो दूर ना जान हो जिन एह रचना राची नाम त्याए ता सुख पाए बिन ना वैपिड़ काची।

प्रीतम किया देह आसीसा हे आसीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मिलो एक भूले नाव हो थिह हो थाव हो गुर सबदी सच खेलो।

उत्पुखै का चलिया दुखा सुख विसरै मेरी माए साचा साहेब साचे नाय रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आर्थ के कीमत नहीं पाए जिस मिल आखन पाए वड्डा न होवे घट न जाए ना ओह मरै ना होवे सोगा दे ना चुकै भोग गुण एहो होर नाहीं कोई।

तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सो भुख निरंजन है भुख निरंजन, हर अगमा गम्य अपारा, सब त्या वह सब त्या वह तुझी, हसचे सिजनहारा, सब जियो तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्या वह संतोह जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंत सौंदरंत जी, हर एको पुख समाना, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चौज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हम तुत बिन अवना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आखाना, जो सेव है जो सेव है तुझी, जन नानक तिन कुरबाना, हरती आव है तुझी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पै, जिन हर त्या जी, तिन टूटी चमकी फांसी, जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी,

पंकज मोह पगनी चाले, हम देखा तैं डूबी अले। मन एक न चेत मूड मना, हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जति सतिनी पड़िया, मूर्ख मुगदा जन पया। ना हो जति सतिनी पड़िया, मूर्ख मुगदा जन पया। परनवत नान तिनकी सरना, जिंतु नाही वीसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्रात मान खुदेहूरिया। गोविंद मिलन की है दिन बरिया, अवर काज तेरा कितने ना काम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सन जान ला पवजल तन कै। जन्म बृता जात रंग माया कै रहा, जब तक संजय तरनक माया। सिवा साधना जानिया राया, कहो नानक अम नीच करम्बा।

राखहो शर्मा कबियो बाज बेंती चौबई हमरी करो हाथ दे रचा पूर्ण होए चिदगी इच्छा तब चरण मन रहे मारा अपना जान करो प्रतबारा हमरे दुस्सवे तुम का बहो आप हाथ दे मुई बजाव सुखी बसे मोर परवारा शिव से सब करतारा मोर चैलेंज कर दे करिया सब को आसंगरिया पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अब न त्याओ जो बचाओ सो तुमते पाओ शिव सिख हमारे तारी है चौचन सतन मारे मारी है आप हाँ दे मुझे बरिया मन का तरसन वरिया हुजो सदा मारे पछा श्रीयास तो जो करियो रक्षा राख लेह मोय राख नारे साहेब संत साहेब प्यारे दीन बंद चनके हंता तुम हो पर चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए कर शिवजी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल का की आत्मासा जमन का जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जमन का सलो सवारा नमस्कार है ताई हमारा जमन का स जत मनायो देव दै जचन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझी हमारा नमस्कार श्री को मारी सगल प्रजाजनी आप सवारी शिवकुन को सबगुण सुख दियो सतन कोपल मुंबद कियो घट कर कई अंतर की जानता भले बुरे की पीर पहचानता चिंटी ते कुंज रसूला सब पर कृपा दिस कर भूला संतन दो पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही भी पहचान है घट घट के पटपट की जान है जब कर करा कर तारा प्रजा तर्त तम दे अबारा जब आखर करतो कब हो तुम मैं मिल दे सब हो जेते बदन से सब तारा है

नरंकार नलांब आद अनिल अनाद सांब ताका मूलो चार्त पेदा जाको पेवन पावत बेदा ताको कर बाहन अनुमानत मां मूल कछ पेद न जानता।

बरनद पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखन जाय पसारा के बे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनु स्वरूपा रंग पयो राव के पूपा अंडा जेर सिद्ध किनी उत्पज खान बौरत दीनी कौं भू राजा वह बैठा कौं सिमट पे शंकर इकैटा सिगरी सिर दिखाई अचंपव आद जगाद स्वरूप स्यंपव अब्रचा मेरी तुम करो सिख्या उबार है सिख्या संग्रो दुष्ट जिदे उठो तल पाता सकल मलेश करोड़न काता जे अस्तु तब सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख है मारे फुख जन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सटारे जो कल को एक बात आए हैं ताके का निर्णय आए हैं रचा होए ताए सब गाला दुष्ट अरि टरे तत्काला कृपा दे तन जाए निहारो ताके ता तनक में होर हो रिद्ध सिद्ध सद कर्मो सब होई दुष्ट चास है सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पाते ताई उबारा चिंदर नाम त्यारो कहा दात दुष्ट दोते रहा खड़ग कियेत मैं शरण तिहारी आब आदे लियो बारी सर्व ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोग ते लियो बचाई सवैया पाई गए जब दे तुम रे तबते कुंवा तरे नियानियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक अहमत एक न मानियो सिमर सातर बेसब बहु भेद गए हम एक ना जानियों।

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताहे। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुकते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया।